गर्द प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर सब थोक को निम्ति प्रभु आज हम उद्धारकर्ता हम मुक्तिदाता परमेश्वर तपे हुनुभएको निम्ति तपे को प्रेम को निम्ति हमी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं तपे को अनुग्रह को निम्ति हमी

0: SBS गोरखा रेडियो हो
1: सैन्य समुदाय मा
0: लाइन भरी
1: ऑन एयर
0: एप मा
1: अनि स्मार्ट स्पीकर मा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएसबीएस
0: यो बीएसबीएस गोरखा रेडियो हो।